मुंदा संतोख सरमपत झोली ध्यान की करे विभूत थिंथा काल कुवारी काया जुत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीते जगजीत आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अना

सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैतो जशन पजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तुसी को हमारी।

कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पशान है कट कट के पट पट की जान है जबुद करख करा करतारा प्रजा धरतब देह अपारा जब आ करख करत हो कब हूँ तुम मैं मृत दे तर सब हूँ जेते बद

चीनत न पिव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत पिन पिन तो चेती तुमरा लखाना जाय पसारा केवद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कही भूपा अंडज जे रज से तज कीनी उत पुज खान बहर रच दीनी कहूं फूल राजा हवे बैठा कहूं सिमट पयो शंकर कैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप सुजंपव अवरच्छा मेरी तुम करो सिख अवार असिख संगरो दुष्ट जेते उठ बत उत पाता शकल मलेश करो रण काता जी अस्तुज तब सरणी।

माता ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता किलविक शक्ल देह को हरता दुष्ट दुखियन को शय करता श्री अस्तुज जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वाशत फल पावे सोई दुख न दिसै व्यापत कोई अडिल सुने गुंग जो जाहे सुरस ना पावई सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पौ

सलाम और प्रणाम बेमिसाल परिवार के तमाम सदस्यों को। आज समय 9/11 है। जी हाँ, 9/11 है। आपको याद है ना क्या हुआ था आज? फिर एक बहादुर पायलट समन उसका किस्सा दोहराएंगे जिसने नुकसान से वॉशिंगटन को बचाया था। थोड़े से नुकसान तो काफ़ी हुआ था, लेकिन एक जगह पर हमला नहीं हुआ था इस पायलट की वजह से। और समय दूसरी खबर क्या है? दूसरी खबर का कोई दहशतगर्दी के साथ ताल्लुक नहीं है, लेकिन है हवाई जहाज़ की खबर। ये हवाई जहाज़ आजकल कहाँ है, किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि सफ़र पर नहीं है। तो ये होगी हमारी दूसरी खबर। आवाज़ें होंगी लेकिन फिल्मों से नहीं ली गई होंगी, किसी फिल्म से वो आवाज़ नहीं होगी। तो आप मुझे बताएंगे नाम आवाज़ का। पहले गाना जो है वो, क्योंकि उड़न खटोला है, किसी की बड़ी फेवरेट फिल्म है, लंदन में रहते हैं तो उनकी वजह से ये गाना।

0: क्या बात है, और कर रहे थे प्यार अली कोशिश कि मिल जाए मुझे वक्त पर उनकी रिकॉर्डिंग अभी नहीं आई। खैर, जुमा मुबारक कहा है सभी को रूपल ने। ट्यून्ड इन लाउड एंड क्लियर, ऑस्ट्रेलिया में है ना, इसलिए तो उनके साथ ही आई हैं उनकी बहन और वो हैं सोनल। सोनल क्या कहती हैं, कहती हैं गुड मॉर्निंग परवीन जी, हैप्पी फ्राइडे टू ऑल द लिसनर्स फ्रॉम सोनल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। जवानी आए मस्त मस्त पीले जलाती रहे, हाँ हाँ जवानी आए मस्त मस्त बिन पिए है, हाँ जलाती जल रही हैं राह में दिए। ओके, मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी ये जो फरमाइश है इसको पूरा कर लिया जाए। ओके, ये हैं सोनल, हमारी न्यूली नई लिसनर है, न्यूली रिक्रूटेड मैं कहने लगी थी। अमीर अली राणा, परवीन जी विशिंग ऑल द बेमिसाल बीए फैमिली जुमा मुबारक। जब दुनिया से उम्मीदें टूट जाती हैं तब अल्लाह की याद दिल को संभाल लेती है। बंदा अपना दर्द तो लफ्जों में ना कह पाए तो भी अल्लाह उसके दिल का हाल जानता है। लोग साथ छोड़ सकते हैं मगर अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। बस यकीन अल्लाह पे रखो जो तुम्हारे हक में बेहतर है, ये तुमको ज़रूर पहचानेगा, वो तुमको ज़रूर पहचानेगा। अमीर अली राणा, वाकई बहुत अच्छे, खुदा पर बड़ा अच्छा कहा है। और शमीम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, LG Smart TVs caught recording private conversations and scanning devices connected to home Wi-Fi even on standby. कहते हैं कि जो LG के स्मार्ट TVs है ना, ये ना रिकॉर्ड कर रहे हैं निजी conversations, गुफ्तगु आपकी, आपको पता ही नहीं। ओहो, ये क्या हो रहा है, होम Wi-Fi का इस्तेमाल हो रहा है। शमीम थैंक यू। भरत गंगाराम, सलाम पेश किया है सभी को। और यहाँ पर है कौन जिन्होंने कहा गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल, वो हैं जसपाल सैमी। थैंक यू जसपाल सैमी। सोनल मोदा, क्या करें आज तो कहा है कि बिजली होगी नहीं सुबह 9 से शाम 5 बजे तक। मुंबासा अंधेरे में है, चलिए जुमा मुबारक आपको। और प्यार अली भाटिया,
1: प्रवीण जी घर आया मेहमान, ये गाना फिल्म अर्जुन खोटला का है, 1955 की मूवी है जिसको लता मंगेशकर ने गाया है और जिसको शकील बदायूनी ने लिखा है और जिसकी धुन नौशाद ने बनाई है। ये गाना निमी पे फिल्माया गया है, उसी साथ ये मूवी में दिलीप कुमार भी साथ थे। गाना अच्छा लगा और दूसरे भी गाने अच्छे हैं ये मूवी के।
0: अच्छा, बहुत खूब बहुत खूब। अमीर प्यार अली भाटिया, मैं कहने लगी थी अमीर अली भाटिया। और यहाँ पर जुमा मुबारक किसने कहा है, प्लीज़ अपना नाम लिखा करें वरना मैं नहीं करूँगी, फिर मैं नहीं पढ़ूँगी। नाजिम नथु, बहुत शुक्रिया। और साथ आखिरी जो मैसेज, जैश फ्रॉम वोई, टुडे इज माई एल्डेस्ट डॉटर्स बर्थडे। क्या बात है जैश फ्रॉम वोई, बेटी की बर्थडे है, हर नेम इज जानकी and lives in Mauritius, want to wish her a happy birthday. Jash from Voi. Janki, bahut bahut mubarak ho, aapka janam din hai, salgirah mubarak ho, aur aapke walid ki, pitaji ki duaen aapke saath hain. And East FM ki puri team aapko wish karti hai Janki, many many happy returns of the day. Chandrika Vasant Gosai, welcome, I will miss you on Saturday and Sunday. Already I feel like that. Anyway, I'm listening to Bemisal. Chandrika Vasant Gosai. Or Naju from Bristol, United Kingdom. Juma Mubarak to you and all the listeners around the world. Around the globe kaha hai. Hope you all have a fantastic weekend. Ye kaha hai Naju, ye bhi listener hai humare. Bristol mein hai, UK mein. Or Salma ne kya kaha hai?
2: Rishta. रिश्ता वो नहीं होता जो दुनिया को दिखाया जाता है, रिश्ता वो होता है जो दिल से निभाया जाता है। अपना कहने से कोई अपना नहीं होता, अपना तो वो होता है जिसे दिल से अपनाया जाता है। रिश्ते नाम से नहीं एहसास से पहचाने जाते हैं। शुक्रिया, सुबह का प्यार सलाम, सलमा आमद किसुमो।
0: सलमा, और महफिल अनप्लग्ड, समीन आपके लिए ये महफिल है, आप इस महफिल में आए ये आपका फैसला होगा, लेकिन अगर आप ना आए तो आप रिग्रेट करेंगे। महफिल अनप्लग्ड है क्या? ईस्ट एफएम की पेशकश है आप लिसनर्स के लिए। समन एक इवेंट है जहां हम सब इकट्ठे हो सकते हैं, इकट्ठे होकर आपका एंटरटेनमेंट होगा, मनोरंजन होगा आपका, आप अपने प्रेजेंटर से बात कर सकेंगे। और ये जो है कहाँ रखा गया है, गोन जिमखाना में, और 26 सितंबर सैटरडे है, 4 बजे से शुरू हो जाएगा। और फिर लाइव बैंड है, रिदम एंड रागा, क्या बात है, हाई एनर्जी म्यूजिक आपको सुनने को मिलेगा। समझ ना आप आएँ, लेकिन अकेले मत आएँ, साथ किसी को लेकर आएँ, बेशक वो झूठा ही दोस्त हो या फिर झूठे दोस्तों का एक ग्रुप बना लें और साथ कर लें। अभी अभी करें अपने टिकट को बुक, क्योंकि आपने अर्ली बर्ड बनना है। वो कैसे, आपने 1,000 शिलिंग देना है, जहां लोग जब गेट पे आएंगे ना वो 2,000 देंगे, आप सिर्फ 1,000। फी आदमी, फी औरत भी होना चाहिए था, पर फी कस कहते हैं। 1,000 शिलिंग्स में कौन सी आप बड़ा इवेंट आप कर सकते हैं अटेंड? नहीं, ये एक है जो ईस्ट एफएम आपके लिए लेकर आया ताकि आपका फायदा हो, बेशक हमारा नुकसान हो। 1,000 शिलिंग्स पर टिकट, ticketyetu.com पे आपने बुक करने हैं। अभी इसी वक्त बुक करके मुझे बताएं कितने लोगों की बुकिंग की है, कितने लोगों को बुक कर लिया है आपने।

0: चिराग पटेल फ्रॉम कैराटीना बिल्कुल सुन रहे हैं और जुमा मुबारक कहा है तमाम लिसनर्स को, थैंक यू। और साथ ही सैली डार इन लंदन, जुमा मुबारक का पैगाम और आप बिल्कुल सुन रही हैं। और रनेजा नायर, सर रनेजा नायर ने मुझे अभी भी बताया, वो आप पहली कॉलर हैं जिन्होंने मुझे बताया है कि महफिल अनप्लग्ड के लिए उन्होंने टिकट बुक कर लिया। वो खुद हालांकि बजाते खुद वो इंडिया में होंगी, जा रही हैं सफ़र पर, लेकिन अपने शौहर को पति को कहा है कि आपने ज़रूर जाना है, क्योंकि सर मैंने ईस्ट एफ एम आप सुनते हैं तो ये बनता है, करें 1,000 शिलिंग भला क्या है, तो कर लें बुक, जैसे ने रनेजा नायर ने अपने शौहर के लिए बुकिंग कर ली है। काश उमर फ्रॉम दुबई भी आ सकते, उन्होंने आपको जुमा मुबारक का पैगाम भेजा है। और अब देखते हैं कि किसने कहा जुमा मुबारक। यासर ने कहा है कि डिड यू नो देर आर टिपिकली बिटवीन 15,000 and 20,000 प्लेन्स इन द एयर वर्ल्ड वाइड एट एनी गिवन मोमेंट। तो वह 15,000 से समिन 20,000 हवाई जहाज आसमान में उड़ रहे होते हैं किसी पल भी। आप अगर देखें अब भी हो सकता है 15,000, 16,000, 17,000 हवाई जहाज। और समय जब से टिकट महंगे हुए हैं तब से ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं। यासर वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। और मैं भी आपको हवाई जहाज की ही बताऊंगी। पहले शुभ प्रभात quote of the day, both the destination and the journey feel beautiful when loved ones and friends are on by your side, otherwise life feels like a train ride. Okay, ML Vishwakarma कहते जब आपके दोस्त और घर वाले आपके साथ होंगे तो ये जिंदगी का सफर बहुत हसीन होता है। अच्छी बात है। जुमा मुबारक किसने कहा है हमें? जुमा मुबारक कहा है हुसना मोहम्मद ने और साथ कुछ भेजा भी है।
1: परिन जी आप ठीक हो? परिन जी तमाम मुसलमानों को साथ में आपको बहुत बहुत जुमा मुबारक, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज।
0: और सबके लिए आज का दिन शुक्रवार का दिन अच्छा गुजरे। और हमारे लिए भी एक मैसेज आया है।
2: परिन जी राही मत वाले, ये गाना फिल्म वारिस का है, 1954 की मूवी है, जिसको तलत महमूद और सुरैया ने गाया है और जिसको कमल जलालाबादी ने लिखा है और जिसकी धुन अनिल बिश्वास ने बनाई है। ये तलत महमूद का गाना अच्छा लगा सुनाने के लिए, आपका शुक्र।
0: और सोनल और रूपल ऑस्ट्रेलिया में ट्यून्ड इन, मजे ले रही हैं, अपनी फरमाइश भी पूरी करवा ली।

कितना ब्यूटीफुल गाना था उस समय 9/11 हमलों को 25 बरस हो गए ऐसा लगता है कल की बात है 4 हवाई जहाज चोरी हुए थे इस काम के लिए समिन मगर एक जो जहाज था वो भी चोरी हुआ था हाईजैक हुआ था यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 93 ये जो परवाज थी इसको भी इस्तेमाल किया जाने वाला था व्हाइट हाउस के साथ टकराने के लिए लेकिन कुछ फोन कॉल्स वसूल हुई टॉम बर्नेट को वो पायलट थे इस जहाज के तो समिन उन्होंने क्या किया बता दिया गया कि हाईजैकर्स हैं इन्होंने डट के मुकाबला किया हाईजैकर्स का मुसाफिर भी साथ हो लिए और क्या जुर्रत दिखाई हाईजैकर्स के साथ भिड़ गए लेकिन समिन लड़ते लड़ते पेंसिल्वेनिया में ये जहाज क्रैश हो गया और 40 मुसाफिर थे अमला भी सभी मारे गए मगर व्हाइट हाउस के साथ ये जो होना था हमला उस पर उससे बचा लिया टॉम बर्नेट ने बीवी बहुत ही जज्बाती उनकी इंटरव्यू कहते हैं कि हर साल इस दिन में आती हूँ क्योंकि आखिरी कॉल उन्होंने इतनी मुश्किल से मिलाई थी अपनी पत्नी वो नहीं हो रहा था कनेक्ट तो उन्होंने आखिरी कॉल में अपनी पत्नी को कहा कि उसने कहा तुम ठीक हो तो वो कहते हैं कि नहीं कुछ भी ठीक नहीं है उन्होंने एक शख्स को हाईजैकर्स ने मार दिया है ये उनका आखिरी था और आज जहां वो जाती हैं जहां उनकी यादगार है हर साल बहुत दुख होता है समिन इस तरह की बातें सुनकर

0: और जैनुल मोहम्मद आप भी सुन रही हैं प्रोग्राम रोजाना सुनती है शोभना और दिनेश क्या ब्यूटीफुली लिखा है क्या है कि ऑथेंटिक एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग क्राफ्ट दैट इज अनराइवल्ड सुपर प्रोग्राम शोभना एंड दिनेश सो ग्रेटफुल सोनल मोदा जुमा मुबारक आप सबको बेमिसाल अंदाज की फैमिली को मिसेस कोकिला कोकिला ने यूके से जुमा मुबारक आया टू ऑल द लिसनर्स एंड हैव अ ग्रेट अ वंडरफुल वीकेंड अहेड चलो ठीक है समझ एक लड़की है भारत में जो कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है काम भी करती है पूरी मुलाजमत करती है यूएस में फुल टाइम जॉब है मगर मेहंदी लगाने की महारत है एक आर्ट है कि मेहंदी लगाना हम सोचते हैं समझ कि कितना सिंपल काम है आजकल तो ऑफकोर्स मशीनें भी आ गई हैं वो मेहंदी लगा देती हैं आपके पास मेरा ख्याल है स्टिक ऑन मेहंदी के डिज़ाइंस भी होंगे तो लेकिन जो असल मेहंदी लेकर उसके घोल उसको घोल कर फिर लगाना ये आर्ट बहुत कम माहिर हैं ठीक है तो ये लड़की जो है मेहंदी लगाती है बट ऑन द साइड क्योंकि फुल टाइम जॉब है ऑन द साइड ये काम भी जारी रहता है लेकिन सामिन कमाती कितना है मेहंदी से मुझे लगता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर जितना ही कमाती हैं कितना पैसा लेती हैं मेहंदी का $100 एक घंटे का $100 इसके ऊपर 20% टिप मिल जाती है ओके सो $120 ठीक है दुल्हन को सजाने के लिए 10 घंटे लग सकते हैं क्योंकि सब कुछ सर से पैर तक दुल्हन को सजाना है तो कहते हैं कि 1,00,000 भारतीय रुपीस जो है ना वो एक दुल्हन पे लगा देते हैं माँ बाप ऑफ कोर्स इसको देते हैं 1,00,000 रुपीस और अपनी तनख्वाह अलग समझिए जवान लड़की ने तो कमाल ही कर दिया है
1: We've got your favorite song for every moment because we love you like that. East FM, Kenya's premier Asian mix.
2: Bhangra, Bollywood hits and ballads to sing along with.
3: East FM,
2: Kenya's premier
3: Asian mix. Your

क्या कमाल का गाना था, जब ये रिलीज भी हुआ था सभी ने बहुत पसंद किया था। और समिन, वो जो हवाई जहाज़ की मैं आपको खबर देने वाली थी वो यूं है कि हवाई जहाज़ भी रिटायर होते हैं समिन, कितनी देर काम करेंगे। अभी अभी यासर ने कहा 15-20 हज़ार बेचारे आसमानों में घूम रहे होते किसी एक पल, तो अब इनको रिटायर भी करना पड़ता है समिन, तो हैंगर्स में छोड़ दिए जाते हैं बेचारे, या एयरपोर्ट हवाई अड्डे पे हैंगर होते हैं ना वहाँ भी रखे जाते हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट बोन यार्ड्स भी होते हैं जहाँ ये अब इस्तेमाल नहीं हो सकते, उनको वहाँ छोड़ दिया जाता है। रेगिस्तान में, डेजर्ट्स में कोई जगह ढूंढकर इन हवाई जहाज़ों को वहाँ पार्क कर दिया जाता है। लेकिन समय 2016 में टर्की ने अपने एयरबस 300 को अलविदा कहा, 2016 में, तो कहते हैं कि अलविदा करके क्या कह किया, उसको समंदर की तह में जाके छोड़ दिया, 22 मीटर नीचे, समंदर के नीचे अंदर। हजारों परवाजें कर चुका था ये जहाज एयरबस, लेकिन जब कमर्शियल फ्लाइट्स ना कर पाया, थक गया बेचारा, तो अब इसे डाइवर्स के लिए छोड़ दिया गया है। समय वो जो समंदर में डाइविंग करते हैं ना, जो इतना शौक रखते हैं डाइविंग का, वो जाते हैं। ये एक समझ लो कि ये जहाज़ अब एक मस्नूई रीफ बन गया है, डाइवर्स जाके डुबकियां लगाते हैं इसमें, कॉकपिट जहां उनको आने नहीं दिया जाता कभी जब ये आसमानों में था, तो अब ये कॉकपिट में जाकर डाइव करते हैं बाहर निकल, ये टूरिस्ट स्पॉट बन गया हुआ है टर्की का। ये थी जहाज की खबर। अमीर अली राना, आपने कहा यू आर प्लेइंग सॉन्ग्स पिक्चराइज्ड ऑन महमूद, एंड बिफोर आई बुक माय टिकट आई वांट टू नो विल यू गाइस बी देयर। सारी टीम, अमीर अली राना, सारी टीम वहां होगी, आप आइएगा और ज़रूर अपना बुक अभी भी बुक कर लें, 1,000 शिलिंग का टिकट ticketyetoo.com पर, और मेक श्योर के आप आएँ। हर प्रेजेंटर वहाँ मौजूद होगा, इनफैक्ट हर प्रेजेंटर का कोई ना कोई आइटम भी होगा, आपको करके कुछ आपसे बात करेंगे, कुछ बताएंगे, कुछ दिखाएंगे अपनी महारत कहीं ना कहीं।

क्या कमाल करती हैं हमारी कोयल। अब देखते हैं कि यासर ने क्या लिखा है, लेकिन इससे ओके ठीक है, टुडे इन हिस्ट्री पहले कर लेते हैं। इन 1974 एम्परर हाइले सिलासे इज डिपोज्ड फ्रॉम द थ्रोन ऑफ इथियोपिया। जी हाँ, समझ, ये जो हुआ था वाक्या 1974 में, हाइले सिलासी को निकाल दिया गया, सेंडिंग अ रॉयल डिनेस्टी दैट लास्टेड फॉर सेंचुरीज एंडिंग। समय वो जो शाही खानदान के थे और बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा, इस तरह से आ रही थी विरासत में इनके पास ये हुक्मरानी, लेकिन इनको निकाल दिया गया था, हटा दिया गया।

0: Auckland's, Kenya's premier
1: Asian mix.
2: तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फों की लहरा

तेरा हाथ से हाथ छोड़ना, तेरा सायों का रुख मोड़ना, तेरा पलट के फिर न देखना, नहीं माफ करूंगा मैं जब तक है जान।

बारिशों में बेधड़क तेरे नाचने से, बात बात पे बेवजह तेरे रूठने से, छोटी छोटी तेरी बचकानी बदमाशियों से मोहब्बत करूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान।